0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

अपनी रोमांटिक अर्थात नॉटी जिंदगी में और ज्यादा एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, ये एक पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. आई थिंक इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम फॉर मी. तो जो कोट अनकोट ट्रक ड्राइवर प्लेलिस्ट होती है ना, मैं तो वो प्ले कर लेती हूँ और उसके बाद उस बैकग्राउंड म्यूजिक में नॉटी होने का फन ही कुछ और है. लाइक इमेजिन करो, मिलाओ ना यू निगाह हमसे, हो जाए ना कोई खता हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल. इट डजंट मैटर दैट आई एम अ टेरिबल सिंगर, बट आई एम ग्रेट विद माई आइडियाज. सोच रहे हो बैकग्राउंड में ऐसे सात समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे, एंड आप लाइक रिदम को मैच कर रहे हो अपनी मूवमेंट्स के साथ. It's like Zumba meeting passion, meeting like calorie burn, meeting like, oh God, this is so amazing. If you do not believe me, मैं आपको urge करती हूँ कि खुद experiment करके खुद देख लो. और वो करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको खुद करना पड़ेगा with your partner. But do tell me how it worked for you. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं Instagram पर, Facebook पर. And while you do all of that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैनलाज फ्रॉम धू रन धर।
3: नंबर 20।

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है, More than this film, Baby Do Die Do. लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वार्मथ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान। म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से, प्रीतम दा का म्यूजिक।
2: नंबर 17।
3: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
4: लिख रहे हो ना?
3: तुम भी गाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 13.

आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया

gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 घंटे में ये गाना हो गया totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है? इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी. कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है. लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2. नंबर 12.

0: Energy. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 7.

तबाही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव है, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी एक गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन टू,
1: नंबर 6।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक सुरेम ओवर एंड आउट।
1: सुरेम के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, it's hot.

देखा तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं, उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट्स, एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। इस काउंटडाउन की शुरुआत ही आज एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाना नंबर 10 पर डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे, और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे। एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप। इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
3: Number 10.

0: The man, the myth, the legend, Sanju Rathod ki awaz. That was Bangles. Pichle hafte se do pudushe niche drop hoke. This week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao. Mere saath connect karo. Koi gaana share karna ho, bindaas aake hit me up. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसके इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ. आपको बताना है कौन से वाला गाना है. It's a high beat one. At RJ Kanika on Instagram पर मुझे आगे बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए we will play one of these songs on our cassette classics. So stay tuned for that. Moving on with the countdown. अगले वाला गाना Zara Khan Scales का Move Body. 6 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. Move Body is this week on Gaana number 8.
1: Number 8.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana, Gana, Gana, Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: गर्वित प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है दैट हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: तेरी दीवानी,
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है। मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है, सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ। सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम। एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी, एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है। इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है। एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है। बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर हैं इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया। हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर। अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम। सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: ये गाना सुन के मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनिका पर. आओ कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है शीशा। 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है। इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स। माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गुची। गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान, एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं। बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है। एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे, एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक। उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई। पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं। आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी। एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट, जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा। सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट। इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि वीकली पॉप रिपोर्ट कार्ड। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके हिट मी अप, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट उससे पहले एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। शुरुआत ही काउंटडाउन की एक नई एंट्री के साथ हुई, बंजारे का बरसात डेब्यूज ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
1: उसके बाद संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9। ज़ारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7। जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6।
3: तू मेरा हो गया इतना ही काफी है।
1: देन फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5। मिट्टर और का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। हर्ष नुसी का साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के टॉप 2 गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके। राघव कौशिक का गाना, गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज। द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन, 22 हफ्तों से बरकरार, पिछले 3 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन को रिटेन करके बैठा है। बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने दरमिया ऑन नंबर 2, बैरन ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

Mirchi. It's hot. Some

मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, जो अभी अभी शुरू हुआ है। अब तुम फिलहाल कहीं पर भी हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, कॉफी के बिना फंक्शनिंग करने का नाटक कर रहे हो, या फिर चाय चढ़ाकर उसकी अदरक वाली खुशबू का मजा ले रहे हो, या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम करते हुए कैमरा ऑफ करके एक्चुअली क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता है, बट वेयर एवर यू आर, मैं बोलो तो प्रिसला इज हियर विथ यू एंड आई एम गोना स्टे विथ यू फॉर अ फ्यू आवर्स। और आज का मॉर्निंग का फील जो है काफी एक्स्ट्रा स्पेशल है, बिकॉज इट्स कृष्ण जन्माष्टमी। सो ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज मक्खन चोरी करने से लेकर मटकी फोड़ने तक सब कुछ करना, एकदम मिर्चीदार तरीके से करना, मजे से करना। एंड मे योर डे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम किशन जी, एंड साथ साथ में ढेर सारी मस्ती हो और जीरो अननेसेसरी ड्रामा हो। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए है मिर्चीदार बैंगर्स, ढेर सारी मिर्चीदार बातें, स्टोरीज, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड अ लॉट मोर कमिंग योर वे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही चिपक के बैठे रहो। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट बिगिन, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर अ लिटिल टाइम ट्रैवलिंग विदाउट द जेट लैग। चलो रिवाइंड करके पता करते हैं आज के दिन में क्या खास हुआ था। 476 में रोम का वेस्टर्न एम्पायर ऑफिशियली प्लॉट ट्विस्ट ले लेता है। रोमुलस ऑगस्टुलस को एम्परर के पोस्ट से हटा दिया गया था बाय नन अदर देन ओडोएसर, बेसिकली रोमन एम्पायर का लॉग आउट कर दिया था। 1609 में फास्ट फॉरवर्ड टू मैनहट्टन, नेविगेटर हेनरी हडसन डिस्कवर्स द आइलैंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग फॉर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज हम जहां ट्रैफिक, रेंट और कॉफी के बीच सर्वाइव करते हैं, वहां पर हडसन को बस आइलैंड मिला था। 1886 में अपाचे लीडर जेरोनिमो सरेंडर्स टू द यूएस ट्रूप्स एट स्केलेटन कैनियन इन एरिजोना। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन गेट्स द पेटेंट फॉर हिज रोल फिल्म हैंडहेल्ड कैमरा एंड रजिस्टर्स कोडाक। 1998 में लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ऑफिशियली लॉन्च गूगल एज अ प्राइवेट कंपनी, और तब से दुनिया का मोस्ट यूज सेंटेंस है गूगल कर ले यार। एंड 2016 में पोप फ्रांसिस कैनोनाइजेस मदर टेरेसा एज अ सेंट एट वैटिकन सिटी। और हाँ, आज जन्माष्टमी भी है, सो एवरीवन सेलिब्रेटिंग हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी में, और दे हैव कृष्ण जी का विजडम, काफी सारा मक्खन विथ असली मिर्ची। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

क्लोज टू द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर चेक कर लेते हैं। फिलहाल इट्स 73 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। गुड न्यूज ये है कि बस अब सनशाइन एक्सपेक्टेड है, सो दोज क्लाउड्स आर बेसिकली जस्ट फिनिशिंग देयर शिफ्ट एंड हेडिंग होम। आज का टेम्परेचर विल हैंग बिटवीन 72 डिग्रीज फारेनहाइट टू 84 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होने वाला है 74 से 86 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, बिकॉज ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड विंड मिलकर अपना ही वातावरण बना रहे हैं। एंड आफ्टर द 18 millimeters of rain in the last 24 hours, today is looking pretty dry. 0 millimeters ka precipitation expected over the next 24 hours. To barsaat ka tension nahi hai, ghar par umbrella chhodkar ja sakte ho. Yesterday we went from 69 to 87 degrees Fahrenheit ka temperature and aaj ka high jaane wala hai 84 degrees Fahrenheit ke aas paas. So aaj ke din you can say the weather is behaving itself. And abhi filhal tum drive kar rahe ho bahar jaakar kuch errands run kar rahe ho ya phir ऐसे घूमी घूमी के लिए बाहर आए हो, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ वाला, कैरी योर वाटर बॉटल, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार।

वाइब्स को बना कर रखो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड व्हाइल यू आर एट इट कम से हाय टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप मी एट 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: प्यार में चमको जैसे जुगनो। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिस्सला तुम्हारे साथ में। एंड ये सुनो,
1: मिर्ची वॉच इट।
0: Indian scientists have helped make headlines at the IG Nobel Chemistry Prize. And the star ingredient is something most of us would normally attack with a slipper. I'm talking about cockroaches. An international research team including India-linked scientists Sanchari Banerjee, Nitish Satyanarayan and Jandiam Shrikant and Subramaniam Ramaswamy studied milk protein crystals produced by viviparous cockroaches. And get this, these protein crystals pack more than 3 times the energy of an equivalent amount of dairy milk. Matlab ki mummy agar kal se bole beta doodh pee lo, to please clarify kar lena, normal wala ya cockroaches wala. लेकिन जोक्स अपार्ट, दिस इज एक्चुअली फैसिनेटिंग साइंस, बिकॉज रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग हाउ दीज प्रोटीन क्रिस्टल्स कुड पोटेंशियली हैव न्यूट्रिशनल एप्लीकेशन। देसी साइंटिस्ट ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि जहां दुनिया कॉकरोचेस को देखकर भाग जाती है, वहां पर साइंटिस्ट उसमें प्रोटीन एंड स्ट्रेंथ देखा करते हैं। एंड फॉर मोर सच क्वर्की न्यूज, मैं बोले तो प्रिस्सला तुमसे मिलती रहूंगी मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अभी मिर्ची तक गाने चलाती हूँ तुम्हारे लिए। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम on Instagram and X, and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम्हें श्री मॉर्निंग्स। और अब हमारे बर्थडे बेबीज के लिए हैप्पी हैप्पी टाइम आ चुका है, क्योंकि हम विश करने वाले हैं तुमको हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब सारा केक खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और अपने आप को ट्रीट करते रहो। एंड अब आई एम गोना ट्रीट यू विद द लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज जो आज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी टू यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले द क्वीन बी हरसेल्फ यानी कि बियॉन्से का आज हैप्पी बर्थडे है। देन वी हैव गॉट कॉमेडी रॉयल्टी डेमन वेन्स, म्यूजिक माएस्ट्रो मार्क रॉन्सन, the hilarious Whitney Cummings, Yellowstone star Wes Bentley and voices you may recognize from Futurama's John DiMaggio. Aur list yahan khatam nahi hoti hai. Candy Alexander is also celebrating today. स्पोर्ट्स स्टार्स में से गोल्फ लेजेंड टॉम वॉटसन, ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन डॉन फ्रेजर, बेसबॉल हॉल ऑफ फेमर माइक पियाजा एंड WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स। तो आज के बर्थडे बेबीज, टुडेज असाइनमेंट इज सिंपल, ईट द केक, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, बी वेरी वेरी हैप्पी, ट्रीट योरसेल्फ एंड बिहेव लाइक यू आर एक्चुअली बियॉन्से, क्योंकि पर्सनालिटी तो सेम ही होगी ना। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। यू कैन सेंड मी योर बर्थडे शाउट आउट एट मिर्ची प्रिस, ये इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हो तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Happy Janmashtami to all. Janmashtami की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी Rajjewels की टीम की तरफ से। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,400, $4,400 पर ट्राई अउंस गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। लेबर डे वीकेंड पे आने वाले मंडे को Rajjewels आपके लिए अवेलेबल है, ताकि जब आप गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करना चाहें, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसके अंदर कोई हिडन फी, कोई इंटरेस्ट। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके अप्रूव होने पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाती है और 9 किश्तों में पैसे Rajjewels की टीम को देते हैं। एक बार फुल पेमेंट के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट दोबारा ओपन होती है नए गोल्ड पीस गोल्ड ज्वेलरी को घर ले जाने के लिए। आइए Rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: And there you go, latest gold rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करने के लिए Instagram पर ढूंढो Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। अगर WhatsApp पर कनेक्ट करना है तो 9033 Mirchi is my number, 9033647244। Stay tuned and stay hot।

Energy. It's hot.

0: होगी। मेरा नाम है भरत कुमार, फॉलो मी ऑन माय चैनल
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब जिसका तुम वेट कर रहे थे वो आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर, यानी कि
1: मिर्ची राशि जोन।
0: It is, यानी मेष राशि। आज थोड़ा इनर पीस पे फोकस किया जाए, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी दैट गेट्स योर माइंड टू स्टार्ट रनिंग अ मैराथन बिफोर ब्रेकफास्ट। लकी कलर इज सैफरन, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, सो डोंट ट्राई टू बी एवरीबॉडी सुपर हीरो टुडे। रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होता है, ओके। लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इवनिंग With friends, absolutely. बस फूड के साथ थोड़ा सा कंट्रोल रखना, because your stomach did not sign up for all you can eat buffet. Lucky color is coral, lucky number is 22. Cancer यानी कर्क राशि, आज अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा गॉसिप करो, थोड़ा सा लाफ्टर थेरेपी ले लो। ये फ्री थेरेपी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती है। Lucky color is lavender, lucky number is 9. लियो यानी कि सिंह राशि, थिंक पॉजिटिव, ड्रीम बिग एंड फोकस दैट रॉयल लियो एनर्जी ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट। मैनिफेस्टेशन मोड ऑन करो। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 31। वर्गो यानी कन्या राशि, आउटिंग्स एंड सोशल प्लान्स आर गिविंग यू गुड वाइब्स टुडे। सो हाँ, कैलेंडर में जो मे भी लिखा है, मेक इट अ यस। Lucky color is peach, lucky number is 18. And that's it for your Rashi Zone part 1. Baki bachi 6 rashiyon ko lati hu thodi si der mein. Tab tak tum suno ye mirchidar bangers aur mujhe follow karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: प्रिसला तुम्हारे साथ में. वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट द्वितीय.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: Libra यानी तुला राशि, schedule packed है, life hectic है, but health is looking steady. So busy रहो, but body को unpaid intern मत समझो यार. Lucky color is sky blue, lucky number is 26. Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि, तुम्हारा एक generous gesture किसी का stress कम कर सकता है और surprisingly तुम्हारा भी. Kindness zero cost पे आता है लेकिन full returns के साथ आता है. Lucky color is burgundy, lucky number is 11. Sagittarius यानी धनु राशि, mood swings को थोड़ा सा leash पे रखो. Close relations में unnecessary फ्रिक्शन से बचना है तो रिएक्ट करने से पहले ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 34. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, एक्साइटमेंट अच्छी चीज है लेकिन इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैनेज करो यार. हर इमोशन को 4K में फील करना जरूरी है क्या? नहीं ना. लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 5. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज दूसरों को जज करने की टेम्पटेशन से बचो क्योंकि कार्मा नहीं तो कॉमन सेक्शन तो रेडी ही है. लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 27. And last but not the least, Pisces यानी मीन राशि, तुम्हारी optimism और hopes are glowing today. Fresh outlook, positive vibes, basically your inner sunshine is clocking in. Lucky color is rose gold, lucky number is 16. And that's it for your Rashi zone. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. Follow कर लो मुझे. मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X. And 9033647244 is my number on WhatsApp. Stay tuned and stay hot.

मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड अब टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स को रैप अप करने का. लेकिन बिफोर आई लेट यू गो, लेट मी टॉक अबाउट बॉलीवुड. आमिर खान रिसेंटली रिकॉल्ड शूटिंग फॉर आइकॉनिक दिल चाहता है का सीन विद अक्षय खन्ना, एंड अपेरेंटली अक्षय खन्ना ने आमिर खान को 17 टाइम्स स्लैप किया. 17. फरहान अख्तर, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, ही रिमेंबर्स दैट बाय द टाइम दे फिनिश्ड शूटिंग आमिर के फेस पर एक प्रॉपर मार्क बन चुका था और एक साइड ऑलमोस्ट स्वोलन था और लाल हो चुका था. मतलब कि मेथड एक्टिंग का भी एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन बॉस आमिर खान के परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है. मुझे तो यार कोई ऊंची आवाज में बात भी कर लेगा तो मेरा रोना निकल जाएगा. और यहाँ पर कट परफेक्ट होने तक थप्पड़ पड़ते रहे हैं, और उसके बाद शायद आमिर खान ने पूछा होगा आइस पैक किधर है भाई, कोई गाल पर आइस पैक लगा दो. एंड विद दैट फिल्मी थप्पड़ स्टोरी, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला हैज ऑफिशियली कम टू एन एंड फॉर दिस वीक. यू हैव अ फैबुलस लेबर डे वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड प्लीज रियल लाइफ में 17 स्लैप्स वाला सीन रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी क्लोज दोस्त क्यों ना हो. और अभी तुम्हारा दिन खत्म नहीं हुआ है तो जाओ अपना दिन कॉन्कर करो, और साथ साथ में मुझे फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. दैट्स मी साइनिंग ऑफ. कीप इट मिर्ची एंड स्टे हॉट.

0: हर एक चीज का आखिरी बार तो होता ही होता है, और ऐसे ही वो एक दिन भी आया था हमारी जिंदगी में जब हमने कुछ आखिरी बार किया। और आज ना ऑल ऑफ अ सडन आई कैन थिंक ऑफ दैट डे जब मैंने अब तक आखिरी बार खो खो खेला था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. हाँ यार, all of a sudden मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने last time खो खो खेला था अब तक, और वो इसलिए याद है क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए थे जब हमने खो खो खेला था। बचपन का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल हो जाता मेरे लिए याद करना कि मैं ना याद कर पाती। एंड ये ना 2015 की बात है, तो 10 साल पहले यानी कि 2015 में दिवाली की छुट्टियों में हम सारे कजन्स ने प्लान बनाया था कि हम इकट्ठे होंगे, और एक दूसरे को मनाने के बाद जब हम इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्यों और कहां से ऑल ऑफ अ सडन खो खो खेलने का प्लान हो गया। एंड माइंड यू, हम सब बड़े हो गए थे तब भी, मतलब कोई कॉलेज में है, किसी की जॉब नई नई शुरू हुई, ऐसा सारा सबका कुछ ना कुछ यू नो अडल्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो बचपना था ना हमारे अंदर वो नहीं गया था, और हमने खो खो खेला। और मुझे आज भी वो शाम याद है यार, इतने मजे किए थे हमने, इतने मजे किए थे कि बस वो जो शाम है ना वो छपी हुई है मेरे दिल और दिमाग पे। लेकिन वो शायद आखिरी बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना जिंदगी में कदम रखा ही था, सबने कमाई करनी शुरू करी ही थी, अडल्टिंग सबकी शुरू हुई थी, उसके बाद ना सबने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जॉब्स को लेकर इतने नर्वस कि यार अगर छुट्टियां ज्यादा ले ली तो बॉस डांटेगा, काम को लेकर इतने ज्यादा एंग्शियस कि सिर्फ काम में घुसे हुए अब तो फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। और ना मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार होता है शायद ऐसा लाइफ में कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जॉब्स ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम भी आएगा, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो आपके लिए भी आएगा और मेरी जिंदगी में तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैं सबको याद दिला रही हूँ ना ये बात। एग्जैक्टली माय पॉइंट। चलो जी, अभी तो फिलहाल मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। और सुनो, एक काम और करो, अगर आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कोई बचपन का खेल या कोई बचपन का काम किया हो तो DM me डेफिनेटली ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड।

0: 1998 में प्रोफेसर वायरस ने कहा था कि लोगों को ना सिर्फ नंबर वन याद रह जाता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता, और बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नंबर वन नहीं यार, जो लास्ट किया था ना, जो लास्ट हुआ था उसे मेमोरी में ताजा किया जाए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, मुझे आज जो कुछ moments ऐसे हैं जो last कभी हुए थे, जैसे कि school का वो आखिरी दिन यानी कि farewell वाला दिन, boards का time था, of course, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, prep leave चल रही थी, school तो हम जाते नहीं थे, और उसी दौरान farewell का time भी आ जाया करता था, और किसी ने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल के लोग हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे इकट्ठा ये आखिरी बार हो रहे हैं, इसके बाद नहीं होंगे, किसी ने नहीं सोचा। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था वो दिन, क्योंकि हमारा ध्यान पता है किन सारी चीजों पर था, कि कौन कैसा लग रहा है, और मेहनत भी बहुत की थी यार, ऑफ कोर्स। आई मीन स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी थी, जबकि मम्मा के पास पूरा साड़ियों का कलेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर मम्मा ने अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से मुझे एक सिल्वर का लॉकेट भी दिलाया था, और स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। वैसे पार्लर में जाकर तैयार होने का सीन तब तो इतना था नहीं भाई, तो हमारी जो पड़ोस वाली दीदी थी ना, वही आई थी मुझे तैयार करने के लिए। यस, और क्या दिन था वो वाकई में, खाना पीना साड़ी संभालते रहना, एंड देन वो वाला सीन भी आ जाता था, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट स्माइल, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हमें टाइटल्स दिए गए थे, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला था, लेकिन बात वही है कि हम इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व थे कि कहीं वो दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि ये आखिरी टाइम है जब हम इस तरीके से मिल रहे हैं, और उसके बाद आई स्वेयर हम कभी ऐसे नहीं मिले। एंड दिस डे बिकेम वन ऑफ दोज लास्ट डेज जो मुझे याद रह गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके स्कूल का लास्ट डे याद है, तो मुझे डीएम करके बताइएगा माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बोर्ड्स का वो लास्ट वाला पेपर वाला दिन, जब हम इतने खुश हो रहे थे कि ये एग्जाम्स खत्म, स्कूल खत्म, हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस मोमेंट में कि सब कुछ तो खत्म, साथ ही साथ ये रोज मिलना, एक दूसरे को देखना, गॉसिप करना, गप्पे मारना, दिल के छाले फोड़ लेना और दिल हल्का कर लेना, ये भी खत्म।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और वो दिन एक ऐसा दिन है जो आज भी मेरी memories में छपा हुआ है. Because of the reason कि यार वो आखिरी दिन था जब हमारी पूरी क्लास कॉमर्स सेक्शन जो था वो इकट्ठा था. उसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले नहीं. कहीं चार दोस्त मिल जाते हैं, कहीं दो दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हुआ. रियूनियन में भी सब साथ नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं, किसी की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सब नहीं आ पाते हैं. लेकिन वो दिन मुझे याद है जब हम खुशी मना रहे थे कि आखिरी पेपर है, आखिरी दिन है स्कूल का, ये मुझे याद है. आज भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए, सब के सब हो हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे मुझे अपनी मेमोरी में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो. और हमें से काफी सारे लोग जो है अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर गए थे. पहले से ही डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि हम अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर आएंगे उस दिन. और मार्कर से सबने उन व्हाइट शर्ट्स के ऊपर मैसेजेस लिखे और लिखवाए एक दूसरे से. एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे पास आज भी वो व्हाइट शर्ट रखी हुई है जिस पर मेरे क्लासमेट्स के, मेरे दोस्तों के, सबके मैसेजेस हैं. इनफैक्ट उस व्हाइट शर्ट की उस दिन भी इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो करवाते ही करवाते हैं. लेकिन आज उस सिर्फ एक व्हाइट शर्ट जिसकी अहमियत बढ़ गई उन मैसेजेस की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. वो ढूंढती हूँ कभी कभी तुम्हें कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गई है और उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार ये गायब नहीं होनी चाहिए. भले ही कोई नई शर्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पुरानी वाली जिसके ऊपर मार्कर से आड़ी तिरछी लाइनों में मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं जानी चाहिए. वो ज्यादा प्रेशियस हो गई है मेरे लिए. तो सोचो जरा, हम जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट में हम कुछ और फील कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मोमेंट अब कभी नहीं आएगा. एंड आई थिंक लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ इसी तरीके से, आज भी कुछ ऐसा ही है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बचपन की यादों में जाते हुए कि आपको क्या ऐसा कोई मोमेंट याद है कि यार वो लास्ट था, उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं. डीएम करिए ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: देवियों और सज्जनों, इस डायलॉग से पता लग जाता है कि आप क्या देख रहे हैं।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कौन बनेगा करोड़पति इज अ शो जो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन जब इस शो की शुरुआत हुई तो ये शो ने अमिताभ बच्चन के करियर को पुनर्जन्म दिया था। दिस वॉज द टाइम व्हेन अमिताभ बच्चन वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच और इस शो ने उन्हें फिर एक नई पहचान दी एंड ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम अगेन, लेकिन एक नए अवतार में। हालांकि इस शो को शाहरुख खान ने भी होस्ट किया है, लेकिन लुक्स लाइक द ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन होस्टिंग द शो। तो देवियों और सज्जनों, 10 बज गए क्या? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो यार, अभी लाइट रिमोट से या मोबाइल के ब्लूटूथ से बंद हो सकती है, लेकिन एज अ 90s किड लाइट बंद होती थी इस डायलॉग से, जो लास्ट में आएगा वही लाइट बंद करेगा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एज अ 90s किड यही हमारा तरीका होता था यार, किसी भी कमरे की लाइट बंद करने का, कि खुद तो भाग लो और ये ऐलान करते हुए भागो कि जो कमरे में से सबसे लास्ट में निकलेगा ना, वही लाइट पंखे टीवी बंद करके निकलेगा। लेकिन आज तो लाइफ 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आज लाइट बंद करने के लिए कोई ऐलान नहीं करना पड़ता है, या तो रिमोट यूज कर लो या अलेक्सा को बोल दो, लाइफ सॉर्टेड है। किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ जाएगी कि लाइट बंद करने के लिए बंदों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात पे अल्लाह के बंदे हंस दे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर एग्जाम वाले रिवीजन,
2: यादों को चिट्ठी।
1: बाप रे बाप, टाइम टेबल आता नहीं था कि तुम्हारी एक लिस्ट बन जाया करती थी कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एग्जाम्स पास आते हुए नजर आते थे और तुम हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते थे। सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे साथ बैठना, वही पुराने चैप्टर्स को दोहराना, टॉपिक पर टॉपिक टिक करना, जैसे हर बार कुछ नया सीख रहे हो जबकि सब कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ होता था। तुम्हारे बिना तो जैसे एग्जाम्स की तैयारी ना बिल्कुल अधूरी लगती थी। अगर किसी सब्जेक्ट में मैं तुम्हें नहीं लाती थी ना अपने साथ, यानी कि मैंने अगर उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया है, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं एग्जाम कैसे दे रही हूँ। कभी रट्टा मारते वक्त तो मेरा साथ देते थे, तो कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में तुम्हारे सहारे सब कुछ आसान हो जाता था। तुम्हारी वजह से रिवाइज वंस बिफोर स्लीपिंग जैसी सलाहों पर अमल हो पाता था। और वो लाल और नीले रंग के हाइलाइटर्स, वो भी तो कितने इम्पोर्टेंट वाले टैग्स थे। सब आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। नहीं नहीं, कोर्स मटेरियल नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल। उस टाइम पर शायद हम ज्यादा ही शिकायतें करते थे, थक जाते थे, लेकिन आज जब वो दौड़ भाग भरे दिन नहीं है ना, तो तुम और तुम्हारा वो साथ बड़ा याद आता है। अब जिंदगी की किताबें बदल गई हैं, लेकिन सच कहूं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ना सिर्फ हमारी नॉलेज को दोहराया करते थे बल्कि पेशेंस और मेहनत भी सिखाया करते थे। और शायद तुम्हारे साथ बिताए हुए पल की वजह से ना आज हम लाइफ को भी रिवाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली तुम जो हमारे स्कूल टाइम में थे, वो आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद हो। वो अलग बात है कि उस कोर्स मटेरियल के साथ, सीरियस वाले लुक के साथ नहीं हो, लेकिन हो तो सही। तुम्हें याद करती, तुम्हें गुनगुनाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: I did not realize यार, शाहरुख खान की चलते चलते विद रानी मुखर्जी was one of those films which was rare जहाँ पे हीरो हीरोइन की इतनी जल्दी शादी हो जाती है, as in मतलब मूवी चलते चलते शादी हो जाती है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो सिर्फ लव स्टोरीज ही दिखाई गई है ना, यहाँ पर मैरिड स्टोरी भी दिखाई गई है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I think ये शायद एक वजह थी कि मुझे चलते चलते उस दौर में इतनी नहीं समझ में आई थी, क्योंकि शादियां किसको समझ में आती थी, रोमांटिक तो हम सब थे, लेकिन शादी मूवी में भी हो जाती थी ना, तो हमारा भी रोमांस खत्म हो जाया करता था। बट यू नो, इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स में भी काफी सारी चीजें जो हुई और हमको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। यू नो, इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस पता है किसको चुना गया था? ऐश्वर्या राय बच्चन को। आई मीन तब वो बच्चन नहीं थी, ऐश्वर्या राय ही थी, लेकिन उनको चुना गया था। मगर उस वक्त उस दौर में सलमान खान और ऐश्वर्या राय वर कपल, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस थे कि सलमान खान सेट्स पर आया करते थे और कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से शाहरुख और सारी टीम को ये लगा था कि यार दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर ट्रबल्स फॉर अस। एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या हैड टू लीव द फिल्म, व्हिच ऑल्सो कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन ऐश्वर्या एंड शाहरुख खान। और मुझे आज भी याद है कि एक्चुअली तब बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में ये खबरें ना खूब आ रही थी कि सलमान खान एक मूवी के सेट पर गया और वहां पर ऐश्वर्या से उन्होंने लड़ाई करी, एंड शाहरुख खान वॉज ऑल्सो देयर, एंड शाहरुख खान बीच में, एंड वॉट नॉट, ये सारी की सारी गॉसिप्स थी उस टाइम पर।

ने इस बात के लिए अपना रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया कि ये जो चेंज उनको करना पड़ा था ना, कि ऐश्वर्या को ना लेकर एक दूसरी एक्ट्रेस के लिए तलाश शुरू करें इस फिल्म के लिए, वहां पर उनको बुरा तो लगा ही था। बट ऑल सेड एंड डन, इवेंचुअली द फिल्म वाज डन बाय रानी मुखर्जी। लेकिन जब रानी मुखर्जी स्टेप्ड इनटू द रोल, तब फिर से रानी और ऐश्वर्या के बीच में क्लैश आ गया। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जब चलते चलते ऐश्वर्या को छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो उनके और सलमान खान के रिलेशनशिप में आ रहे थे उस वक्त, तो फिर ये फिल्म कई सारी एक्ट्रेसेस को दी गई थी, लेकिन सम चोज नॉट टू डू द फिल्म जस्ट सो दैट वो लोग ऐश्वर्या के साथ अपने रिलेशनशिप सही रख पाए।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, बड़ी मजाकिया चीज ये हुई कि अमीषा को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इन एन इंटरव्यू अमीषा पटेल ने इस बात को जाहिर किया कि उन्हें काफी टाइम तक ये नहीं पता था कि चलते चलते कभी उन्हें ऑफर की गई थी। हो सकता है वो हाँ कर देती इस फिल्म के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके जो सेक्रेटरी है उन तक ये बात पहुंची थी और उन्होंने इस बात को अमीषा को बताया ही नहीं कि चलते चलते आपके बैग में आ गई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अमीषा वॉज वेरी बिजी इन दोज डेज। तो या दैट was the reason that she could not do chalte chalte, and then uske baad ye film was also offered to Kajol, lekin Kajol decided to not do the film because of the reason ki she knew ki Aishwarya was doing this film and there is a certain reason jiski wajah se unko ye film chhodni padi hai, aur isse unke aur Aishwarya ke relationship pe kahin na kahin impact aayega, to she stepped back। मगर रानी मुखर्जी कुछ ब्रेव निकली। रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय वो बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, एंड शी सेड यस टू चलते चलते, प्रोबेबली विद द कॉन्फिडेंस कि यार हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज प्रोफेशन एंड लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन शायद ऐश्वर्या राय ने इसको पर्सनली ले लिया, सो मच सो दैट कि आज भी कहीं रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय डोंट सी ईच अदर। इनफैक्ट हमने उनको इन पब्लिक भी कहीं भी एक दूसरे के साथ स्टेप इन करते हुए, स्टेप आउट करते हुए नहीं देखा है। सो या ये जो बहुत अच्छी दोस्ती थी आशुमा और रानी मुखर्जी, क्योंकि रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय को प्यार से आशुमा ही बोला करती थी, वो टूट गई सैडली सैडली। आप एक बात बताओ, अगर आप रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय की जगह होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते? DM कर सकते हो मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है, एंड यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बड़ी लंबी चौड़ी पोएम बन गई यार, बहुत मीटर में बिठा लिया मैंने राइमिंग को। स्टे ट्यून्ड।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कैसेट की साइड बी का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: मिशन कश्मीर का ये गाना जब आया था तो हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन गाना इतना अच्छा लगता था कि बस बाय हार्ट याद कर ली थी इसकी लिरिक्स हमने। Interestingly, this song is actually a Kashmiri folk song, जो एक भवरे यानी कि बुमरो और फूलों के बीच जो रोमांस चलता है ना, उसके बारे में बात करता है। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसपिंदर नरूला की आवाज में दिस गाना sets a vibrant mood। और सिर्फ आवाज ही खूबसूरत नहीं थी, प्रीति भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर, और ऋतिक रोशन इन द पठानी सूट। ओए होए होए होए, बस लड़कों को पठानी सूट में देखना इज वन कमजोरी हम लड़कियों की, नहीं क्या? एनीवेज, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। अभी के लिए तो इस गाने को आपकी प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है मिर्ची सारा। मैं आपसे मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया? फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, द ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है? देखना है तो चलो मैं लेके चलती हूँ। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की जो फिल्म थी, उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर कम डाउन।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था।

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूँ मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था, तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ओ हो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।
1: Ha ha ha ha!

0: पुरानी रेंज पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है, तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है।
1: दिल में मोहब्बत है,
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreyas signing off. I will see you tomorrow. ख्याल रखो अपना. Good night.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Mirchi, it's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: Energy. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट्स गो क्रेजी।

0: अब्बा जब्बा डब्बा।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आज डिस्कस कर रही हूँ दुनिया में पाए जाने वाले दो तरीके के फास्ट बोलने वाले लोग। हाँ हाँ, जो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके बोल नहीं रहे, नहीं समझ में आ पाया ना, बस यही हाल होता है, इसीलिए इनको डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो फास्ट बोलने वाले लोगों की नॉर्मल कैटेगरी है, मतलब इनके बोलने का पेस बाकी लोगों से ज्यादा होता है बट वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के है, ओ हो, दे स्पीक फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट भाई। और गलती से अगर ये अपनी जिंदगी की कोई बहुत ही इंटेंस सिचुएशन समझा रहे हैं जिसमें सब कुछ एकदम आनंद आनंद में हुआ है, तो जिस तरीके से मैं अभी बोल रही हूँ उस तरीके से वो बोलेंगे और फिर आपको ना कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, आपको आया मैंने क्या बोला समझ। वैसे आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh, aankhon hi aankhon mein kar baatein, gup chup gup chup gup chup, koi kus kus kus kus kus. Oh, khwabon ki nadi mein khaye gote, gud gud gud gud gud gud, oi, gud gud gud gud gud. Oh, आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए कुस कुस कुस कुस कुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़.

0: It's hot.
1: Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.
2: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।